0: 25 κιλό. Λέω μα φλούτ, λέω μου το σοκαριό, λέω κλούπο. Από τα γεια, τα κυρία Τάντα. Μάλιστα.
1: परंपराओं को तोड़ने का प्रयास क्यों? समग्र समाज को आह्वान देने से क्या लाभ होगा? जानता हूं मैं, सारे समाज की इच्छा मनुष्य की महत्वाकांक्षा को कुचलती है कभी।
2: Аля! Или если я обывался?
3: Юра, зачем ты это сделал?
4: ไม่ได้ไปพร้อมไปนะครับต่อไป
5: เจ็บเท่าไหร่แล้วน้องเล่าว่าทำไม

0: मेहमानों को खुश कर जाए, मजेदार लज्जतदार स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़, जब जी चाहे शौक से खाए,
1: करम को लम
0: सेक के खाए, तल के खाए, मजेदार लज्जतदार स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़।